आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थाप उथापे, आपे वेख विगसदा प्यारा, कर चोज वेखे प्रभु आपे, आपे वन त्रण सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस ध्रापे, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापे, आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा, आप तरे प्रभु आपे, आपे जाल ली हर आपे, आप अभुल न भुलई प्यारा, दूजा अवर न जापे,

आपे धरती आप है राहक आप जमाए पिसावे आप पकावे आप भांडे दे परोसे आपे ही बैखावे आपे जल आपे दे छिंगा आपे चुली भरावे आपे संगत

कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो, कतहु भिखारी होय के मांग तु फिर तु भीख, कहूं महादान होय के मांग्यो धन देत हो, कहूं

कहूँ देवतान के दीवान में विराजमान, कहूँ दानवान को गुमान मत देत हो। कहूँ इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी से, कहूँ इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो। कतहूँ विचार अविचार को विचारत हो, कहूँ निज नार पर नार के नकेत हो। कहूँ बेदरीत कहूँ तासो बपरीत, कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ।

कहूं देव बानी कहूं सारधा भवानी कहूं मंगला मेड़ानी कहूं श्याम कहूं सेत हो।

जो मंग कर दी एदा पति ओयो चीज लेके हाजिर करदा सी। पर हुण एदी ए परवाह नहीं करदा क्योंकि हुण इनू पता लग गया है कि तत वस्तु कुछ होर चीज है। हुण ए परवाह नहीं करदा, मस्त रहिंदा है। एक दिन वक्त वेखिया, इस स्त्री ने इनू पुछया

जे हुक्म आ गया उस पार ब्रह्म परमेश्वर दा, उसनु कोई मेट नहीं सकदा। तो शेख फरीद जी, असा माया मोह दे जंजाल विच फसे हुए मनुखा नु एक जीवन दी सच्ची गल दसदे ने कि ए जीवन नाशवंत है। जे कुछ सच्चा है तां वाहिगुरु दा परम पवित्र नाम है, और सच्चे अमल चंगे अमल कीते हुए ही दरगाह दे विच कम आउणगे। कहंदे ने फरीद जी,

बाबा फरीद जी सूफी फकीर जिन्हां दी बाणी साहिब गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह विच साहिब गुरु अर्जन देव महाराज ने दर्ज कीती है। कहिंदे ने जिन्हां नूं अपनियां वड्याईयां दा कोई बंदा नेक काम करे ओहदी संसार वड्याई करदा, कोई भला काम करे ओहदी वड्याई करदा, ते जे अपनियां वड्याईयां वल वेख के ओह माण विच आ जावे तां साहिब सच्चे पातशाह दी पवित्र बाणी कहिंदी है भई ओह जिवें मूहले धर्मी पैंदा होवे ता नीवे थां तां नकानक भर जांदे ने, उच्चे थां सुके दे सुके ही रह जांदे ने। एदां वड्याईयां करन वाला बंदा रब दियां बख्शां ते रहमतां तों एदां वांझा रह जांदा जिवें ओह उच्चे टिब्बे रह जांदे।

कृपा भई ठाकुर। कीर्तन हर हर गाई कुलिया कर्म कृपा भई ठाकुर। कीर्तन हर हर गाई हर दिन रैन कीर्तन गाई है। गरीब नवाज पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज उन्होंने कीर्तन दी महान

कीर्तन हर हर गाई। कीर्तन ने ऐसा रंग चाढ़े कर्म खुल गया, कर्म जाग पे। किसे बंदे नू मालिक दी महान बख्शिश होवे ते असी कह देने भाई ये भागशाली है, ये कर्मा वाला है। गुरु महाराज पातशाह कहंदे ने कर्म जागे, कर्म खुलिया। पर खुलिया किवें? मालिक दा कीर्तन गाउण नाल।

तेरी ये जवानी को मला जावेगी, थोड़े दिन ने बंदगी कर ले, क्यों के पता नहीं मौत ने केड़े वेले आना।

भाई तू क्यों रोना है? ते रोन वाला कवेगा मेरा कुछ सज्जन मेरा प्यारा सौंगे है टिकया उठ पवेगा रोन दी केड़ी लोड़ है। ता जवाब दिता उस सुता है हो जी जगह है जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जीरान जीरान कहते ने कब्रस्तान कब्रस्तान जाके सौ गए ने जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया। ए भाई एक दिन सारिया ने उत्थे सोना है।

0: टेक्निक सेवा प्रवान करनी अवगत के
1: संस्कृत ग्रंथ जय श्री जयंत श्री आदि के नामों संबोधित श्री गुरु ग्रंथ साहब विच अंकित जैत श्री ही है। बड़े मनोरंजक अते कठिन राग में शुद्धता सहित महान गायक ही गा सकते हैं। जैत श्री का प्रभाव सुख अते खुशी देने वाला है। खुशी लैण लई मन दे आलसिया उगलाना वाला सुभा छड़ हीरे विच रतन नाम नू वसा के गुरु बख्शिश लैनी पैंदी है। इस राग नू मनोरंजक बनाने लई इस दे स्वरूप विच ईशव दैवत कोमल मध्यम तीबर बाकी स्वर शुद्ध लगाए जाते हैं। आरोह विच ऋषव ते ध्यावत वर्जित हैं। इसका वादी सुर गंधार अते संवादी निषाद है। यह राग दिन के चौथे पहर गाया जाता है। राग जैतसरी विच दो शब्दों का कीर्तन सरवण करो। पहला शब्द श्री गुरु अर्जन देव जी की रचना है। इसनू गा रहे हैं बीबी नवेदिता कौर जी। शब्द की तुक है कोई जन हर सियो देवै जोर। दूजा शब्द गुरु रामदास जी की रचना हर हर सिमरो आगम अपारा भाई महेंद्र सिंह जी सागर प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला शब्द कोई जन हर सिंह देवै जोर।

प्रभु जस करते हैं, हरी दी कीर्ति करते हैं। श्रम थाका पाए विश्रामा, मिट गई सगली ताई भटकना मुझे। कहंदे ने हुण मैनू जिंदगी दा ओ पद प्राप्त होया, जिंदगी दी ओ अवस्था प्राप्त हुई है जेड़ी चाहुंदा सा, जो मिलनी चाहिदी है हर मनुख नूं। अब मोहे जीवन पदवी पाई, चीत आयो मन पुरख बधाता, संतन की शरणा सतसंगियां दी कृपा नाल, गुरु दी कृपा नाल मेरे हिरदे विच वाहिगुरु अकाल पुरख वस गए। और इन्नी रहमत होई है, काम क्रोध लोभ मोह निवारे, निवरे सगल बैराई। काम गया, क्रोध गया, लोभ मोह हंकार गया, यही वड्डे वैरी सन, ए खत्म हो गए। सद हजूर ओए दूर हो गए ते ओ नेड़े हो गया। काम क्रोध लोभ मोह हंकार दूर हो गए, और जिवें जिवें दूर होण ओवें ओवें वाहिगुरु नेड़े हुंदा चला जांदा। और जदों वाहिगुरु नेड़े हुंदा इन्हां नूं दूर जाना ही पैंदा। भाई साहब भाई गुरदास जी ने एक बड़ी प्यारी गल कही, कहंदे ने बुकिया सिंह उजाड़ विच सब मिरगावल भन्नी जाई। कहंदे ने शेर गजिया उजाड़ विच, मिरगावली नूं मिरगां नूं भजना पै गई। अजे गजिया वेखिया किसे नहीं, शेर दी गर्जना सुन के विकारां नूं भजना पै जांदी है, बुराइयां नूं भजना पै जांदी है। एवें गुरु नानक दी गर्ज सुन के, गुरु नानक दी गर्ज की है, गुरबाणी। गुरु नानक दी गर्ज, गुरु नानक दी बाणी जिस हिरदे च गूंजदी है उत्थों बुराइयां नूं भजना पै जांदियां, बुराइयां दी मिरगावली नूं भजण पै जांदी। सिंघ बुके मिरगावली भन्नी जाए, ना धीर धरोआ टिक नहीं सकदे। हुण वाहिगुरु हाजर नाजर है, वह नेड़े है ते दूर हो गए। कतहे ना पयो दुराई, हुण वाहिगुरु दूर नहीं जापदा। सुख शीतल श्रद्धा सब पूरी होए संत सहाई, पावन पतित किए खिन पीतर, पापियां नूं पवित्र कर लिया। महिमा कथन ना जाई, निरभउ भए कोई डर नहीं रह गया। और एक गल समझ लेना, जिन्ना पाओ तिन नाहे पाओ, मुझ भाव निभवे आह। जिन्हां ने एक गुरु का भाव मन लिया, एक गुरु का डर ते अदब मन लिया, वह फिर किसी होर की परवाह नहीं करते, किसी होर को डरन की गल नहीं रह जाती। एक गुरु का अदब, एक निरंकार का भाव रख लिया जाए, और वह रखिए। महाराज कहते हैं जिस दिन का प्रभु का भाव रखिया है, उस दिन ते निर्भव जपे सगल भाव मिटे, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटे। निर्भव पै सगल पै खोए, गोविंद चरण ओटाई। ते जिन्हां गल्लां जिस गल करके पदवी प्राप्त होई है, आनंद आया है, नानक जस गावे ठाकुर का रैन दिन सलिवलाई। हुण तां जी करदा दिन रात उहदा जस गाउंदा रहे। भाई बाबक भाई मरदाने की संतान विचों एक गुरु का कीर्तनिया हो गया। गुरु हरगोबिंद साहब दे समय यह कीर्तन भी करदा सी, और एक बड़ी कमाल की गल के ए तलवार का भी धारनी सी, कीर्तन भी करता है ते जंग भी करता है। और समय दे लोग वेख वेख के हैरान सन, कलाकार की ते तलवार की। हालांकि अगो जाके साहब कलगीधर पातशाह ने तो यह गल बड़े कमाल दे ढंग नाल साबित कीती के जे कलाकार तलवार वाहे ते तलवार वाहन विच कला आ जाती, क्योंकि जालम तलवार वाहेगा तबाही मचा देवेगा। कायर दे हथ तलवार आ जाएगी, तलवार की तोहीन करेगा, लेके दौड़ जाएगा, की फायदा, या कि अपने ही पैर से मार पाएगा कंबदा होया। कायर नू तलवार फड़नी नहीं आती, जालू फड़दा है ते तबाही मचा देता है, लेकिन कलाकार तलवार फड़दा है ते तलवार भी कला नाल वाउंदा है। उहदे तलवार वाउण च कलाकारी है, उहदे तीरां पिछे लगा होया सोना, उहदे तलवार च छुपिया पर उपकार। वीरता की लगन जंग नूं भी कला बना के रख दें। महाराज गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह दा हजूरी कीर्तनिया, गीतकार भी है, संगीतकार भी है,

उस वेले वो अकाल पुरख किसे ना किसे ने इस संसार के बीच कलयुग विच जद जुलम और पापां दी अत हुई धरती ने पुकार की थी ता उस वेले उस अकाल पुरख ने सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग माहे बठाया इस संसार विच तन गुरु नानक साहब प्रगट होए और सब तो वड़ा काम ए कीता चार वर्ण खत्री ब्राह्मण सूद वैस चारा ने एक जगह इकट्ठिया कीता और ए उपदेश कीता ए जाता पाता इंसान दिया बनाईया हैं सानु सारे नु बनान वाला एक परमेश्वर है आओ फिर एक जगह बह के उसका सिमरन करिए तन गुरु नानक साहब का अवतार होया देवी देवतें अपछरा खुशी दे गीत गाए आओ फिर इस खुशी दे मौके आपां भी तन गुरु नानक साहब की पवित्र मिठी याद विच ए शब्द गा के रसना पवित्र करी।

0: मैं अंधले की देख तेरा नाम खुंडकारा।
1: खुंडकारा क्यों लगे?
0: खुंडकारा लकड़ी दे उस टुकड़े नु कहंदे ने जिस उत्ते पटरा टिकाया जांदा है।
1: पटरा क्यों लगे?
0: जिस उत्ते टोबी कपड़े टुकदे ने। पगर नामदेव दी दात दे छीने सन ना कपड़े टोंदे टोंदे हो अपनी आत्मा नु हरी नाम नाल टोंदे सन। इसे लिए उन्होंने कहा कि हे प्रभु मैंने तेरे नाम की उंगली टेके जिन्नी के पटरे नु खुंडकारे दी।

जितने माई भाई बैठे हो सारे प्यार नाल रसना पवित्र करया करो। पोथियां सामने रखण दा एहो एक फायदा है, इंसान चंगी तरह बोल सकदा है। इसलिए सारे प्यार नाल करीबन सारी संगत ही पोथियां रखदी है, फिर पढ़दे क्यों नहीं। पढ़ो सारे, कोई रसना खाली ना रवे। आओ साहेब पंचम पातशाह जी दियां कैसियां ए प्यारियां तुकां ने, पढ़ो सारे।

0: एक ओंकार,
1: गॉड इज ओनली वन,
0: सत नाम,
1: हिज नेम इज ट्रू,
0: कर्ता पुरख,
1: ही इज द क्रिएटर,
0: निर्भय,
1: ही इज विदाउट फियर,
0: निर्वैर,
1: ही इज इनिमिकल टू नन,
0: अकाल मूर्त,
1: ही नेवर डाइज,
0: अजूनी,
1: ही इज बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ,
0: सैभंग,
1: ही इज सेल्फ इलिमिनेटेड,
0: गुरु प्रसाद,
1: He is realized by the kindness of the true Guru.
0: Jap.
1: Repeat his name.

साहिब गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने बख्शिश की, जिथे सारिया भगतां नूं सन्मानिया उथे नामदेव जी का भी आदर किया। नामदेव जी पवित्र बाणी द्वारा मालिक दे चरणा च अरदास करदे ने, कहंदे ने हे प्रभु, यह संसार एक समुंदर है। ते समुंदर विच कहंदे ने जदों देवतियां ने समुंदर नूं रिड़किया ते 14 रतन कढे, समुंदर विच बहुत कीमती नायाब तोहफे ने, पर समुंदर विच बड़े बड़े भयानक जानवर भी बैठे हुए ने। सतगुरु कहंदे ने एक समुंदर तां ओह है जिहदे विच पानी दा कोई अथाह नहीं, ते एक समुंदर ए संसार है। नामदेव जी महाराज इस संसार समुंदर दी बात करदे ने, कहंदे ने हे मालिक,

मैं अनजान हाँ, मैनू तैरना नहीं आउंदा। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवता।

सतगुरु कहिंदे ने जे मालिक नूं मिलना ही ते बच्चे वर्गा हो जा। इहदे विच कोई मेर तेर नहीं। कदे बच्चे ने किसे दूजे बच्चे नूं पुछिया, आ छोटे छोटे क्लास विच पढ़दे ने, अजकल ते ढाईआं ढाईआं तिन्नां तिन्नां सालां दे दाखल करवा दित्ते। कदे किसे दूजे धर्म दे बच्चे नूं किसे ने पुछिया भी तेरा धर्म केड़ा, तेरी जात केड़ी, तेरी गोत केड़ी है? ना, आपस विच प्यार नाल हसदे ने, खेड़दे ने। सतगुरु कहिंदे ने जे रब नूं मिलना ही ते बच्चे वर्गा पुंजा। ये बड़ा भोला है, बड़ा चंगा है।

घोड़े ते सवार होके जालमां दी मौत बन के आ गया। कोई मेरे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी दे बच्चियां नूं नीहां विच खिलार के जुल्म करे, ऐ गल बाबा बंदा सिंह जी बहादुर कोलों बर्दाश्त ना होई। सूरमे दे अखां विच खून उतर आया, डोले फरक गए। ओ जलाद जिहड़े आखदे सन गोड्यां दियां चपणियां उतार दो, कंध ना बिंगी होवे। समाणे दे रहण वाले ओ जलाद जिन्हां ने बच्चियां दे गोड्यां दियां चपणियां उतार दित्तियां सन, अज इन्हां जुलादां नूं घरों कढ के मारिया ते नाल 500 सिपाही नूं भी मार दिता है। जदों ये खबरां सरहंद विच पुजियां, बंदा सिंह बहादुर आ रहा है, हजारां दी गिणती विच शाही फौजां कठियां हो गईयां ने। अज बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद दे उपर हमला बोल दिया।

कभू ना डरो। ए मालिक सानू एहो जिहा वर दे शुभ कमां तों पिछे ना हटिए, जुल्म नूं देख के कदम पछा ना खिचिए, साडी जान ते बेशक चली जाए। बहुत कुरबानियां कीतियां सिंघां ने, मुगल फौजां ने बार बार हिंदुआं ते हमला कीता, ते सिंघां ने बार बार अपनियां जानां दे के इस हिंद नूं बचाया। जिथे सिंघां ने एडियां कुरबानियां कीतियां, उथे मामा ने ते छोटे छोटे बच्चियां ने भी अपना खून डोल के सिखी दियां नीहां नूं पक्कियां कीता। फ्रक्शियर दा राज है, हर रोज 100 सिंघां नूं मारदा है तां प्रशादा छकदा है। इहदे सिपाही जांदे ने, दिन भर सिंघां नूं टोलदे रहिंदे ने, शाम तक पकड़ के लै आंदे ने, ते इह जुल्मी सामने खलो के कोह कोह के मारदा है। अज जिहड़े सिंघ पकड़ के लियांदे ने ना, इन्हां दे विच इक 18 साल दा नौजवान, बुढ़ी मां दा इको इक सहारा। जदों मां नूं पता लगा मेरे पुत्र नूं पकड़ लिया है, पापी राजा जुल्मी राजा सिंघां ते कहर टांदा है, मां दा दर्द उठिया, रहा ना गया, राजे दे दरबार विच गई। मेरा पुत्र सिंह नहीं, तेरे सिपाही ओनू भुलेखे नाल लै आए ने। बई ठीक है, जे तेरा पुत्र कह देवे मैं सिंह नहीं, ते असी ओनू छड़ देवांगे। केड़ा है ओ सामने बंधिया होया है। सिपाही लेके आए, असी तेनू छड़ रहे हां, सानू पता लगा है कि तू सिंह नहीं है। अज गुरु दा प्यारा कूक कूक के बोलिया, कौन कहंदा मैं सिंह नहीं, मेरी दस्तार वल तक, मेरे चेहरे वल तक तेनू मैं सिंह नहीं लगदा।

सिखी किन्नी प्यारी है सिख नू, ओ मेरी मां नहीं, हो सकता है ओदे पुत्र दी शक्ल मेरे नाल मिलदी होवे, पर ओ सिंह दी मां नहीं हो सकती, क्योंकि सिंघां दियां मामां इंज सिदकों डोल दियां नहीं होंदियां। मां नस के आई, पुत्र कह दे एक वारी मैं सिंह नहीं, क्यों जान गुआंदा है, ए तेनू छड देणगे। अज गुरु दा सिंह जोश विच पार आया, जाद कर ठंडे बुरज दी कहानी, सरहंद दा साका अजे बहुते दिन नहीं होए, किवें माता गुजरी ने अपने बच्चियां नू सेरे बन के मौत वल भेजिया सी, भुल गई है, जाद कर। सिंघां दियां मामां कदों सिदकों डोल दियां ने, ओ ते आख दियां ने जा पुत्रा, अज गोविंद सिंह नू तेरे सिर दी लोड़ है, मेरी कुख सफली होवेगी। पुत्र दियां एहो जियां गल्लां सुन के मां दा सिदक जाग उठिया, ऐ कलगियां वालिया, इस हिंदुस्तान दी धरती खातर तू अपना पिता वार दिता, बुढ़ी मां वार दिती, चारे लाल वार दिते, सारा सरवंश वार दिता, ते मैं अपना एक पुत्र लगोई जांदी हां। मां दा सिदक जाग उठिया, आप मुहारे ही मां दे मुख विचों कलगी तर दे जकारे निकल।

आ गाउंदी होई आज एक मां धर्म दी खातर अपने पुत्र नू वार के टुर गई है। किमें चाह है सिंघां नू शहीदियां दा, इन्हां नू मौत कोलों डर नहीं आंदा? नहीं ओए, इन्हां नू मौत कोलों डर नहीं आंदा, सगों मौत इन्हां कोलों डरदी। दरबार सजिया है, कलगीधर महाराज तख्त ते बैठे ने, पिछे बैठी एक माई रोई जांदी है। सतगुरां ने इस नू कोल बुलाया, क्यों बई क्यों रोंदी है, तेनू की गल है, केड़ा दुख है? महाराज, मेरा पति ते मेरे दो पुत्र जंग विच शहीद हो गए सन। ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਈਏ। ਬੱਚਿਓ, मदाने जंग विच जा के कदम पछा नहीं पुटने, अगे होना है। जदों मैं एक खबरां सुनांगा ना कि कलगीधर दी जीत हुई है, मेरे बच्चे बेशक शहीद होए ने, ते मेरा फकर नाल सिर उच्चा हो जाएगा, मैं माण महसूस करांगा। इनी गल आख के ये माता फिर रोण लग गई। कलगीधर आखन लगे, सिंघणीए तू पंजां ककारां दी त्यार पुर त्यार सिंघणी हो के शहीद पति ते पुत्रां दी खातर रोंदी है, सोभा नहीं देंदा। ना महाराज, ऐ गल नहीं, माता आख रही है, ना महाराज ऐ गल नहीं। हजार वार इस धरती ते आवां, हजार वार तेरी शान दी खातर पति ते पुत्रां नू बाहर जावां, कौन मरनों डरदा है? रोना इस गल दा है, जदों मेरा पति ते पुत्र घरों जंग वास्ते टुरन लगे सन ना, ते एक मेरा पुत्र बीमार हो गया है, जो अजे तक बीमारी नाल मंजे ते पिया है। मैनू डर रहिंदा है किते बीमारी नाल ही काल वस ना हो जावे। महाराज, मेरे पुत्र नू ठीक कर दिओ, तेरे एक इशारे ते मैं अपने पुत्र नू नाल लेके मदाने जंग विच जूझ जावां। महाराज सुन के हैरान होए, कलगीधर चमत्कार विच ए इतिहास लिखिया है, अज जो तुसी इस कैसेट विच सरवण कर रहे हो। तन तन है सिंघणीए सिदक तेरा, भले जगत दी खातर आप मोई। तन है सिंघणीए, तू अपने पति ते पुत्रां नू जीवन मुक्त करवा लिया, फिक्र ना कर, तेरा पुत्र बीमारी नाल नहीं मरेगा, ना कर फिक्र। गरीबां ते मजलूमां दी खातर सरबत दे भले लई जंग विच जूझदा होया शहीद होएगा, ते गुरु नानक दी गोद विच जा वराजेगा, जीवन मुक्त हो जाएगा, जीवन मुक्त होवेगा। चरणा नू पकड़ लिया, महाराज एयो ही चाहती सी, मेरा पति ते मेरे दो पुत्र तेरे इशारे ते शहीद हो के सचखंड बराजे होणगे, ते असी क्यों बांझे रह जाइए? गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का उपदेश कदी भी सिंघां ने नहीं भुलाया, अज तक भी सरबत दे भले लई अपना सिर अगे डा देंदे ने। एयो ही अरदास, देहे शिवा बर मोहे इह, शुभ करमन ते कब हो ना डरो, ना डरो अरसों जब जाए लरो, निश्चे कर अपनी जीत करूं। ए महाराज, ए सतगुरु, ए मालक,
ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਦਮ ਕਦੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹਟਣ। ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਦਕੋ ਨਾ ਹਾਰੀਏ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਲ ਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸੀਸ ਦੇ।

पुरख का सिमरन करते हैं। पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज आप कहते हैं फिर ओ परिपूर्ण परमात्मा सदा उन्हां जपन वालियां दे अंग संग है। ए शब्द गुरु अर्जन देव पातशाह दा उचारण कीता होया जिदे विच आप कहंदे हन हे प्रभु हर का नाम हृदय नित ध्यान। हे प्रभु मैं तेरा नाम सदा हृदय विच वसावां। हर का नाम हृदय नित ध्याई सदा तेरा नाम मैं हृदय विच जपां मन करके जपां। हर का नाम हृदय नित ध्याई संगी साथी सगल तराई। ए नाम जपन दे सदके जिना जिना ने भी मेरे नाल बैठ के तेरा सिमरन कीता है नाम जपे है और जपणगे हे प्रभु कृपा करी उन्हां सारियां नूं ही अपने नाम दे सदके तार लई। हर का नाम हृदय नित ध्याई संगी साथी सगल तराई। ते जो नाम जपदे हन गुरु अर्जन देव पातशाह क्यों दिन फिर उन्हां दे अंग संग हुंदा है। गुरु गुरु मेरे संग सदा है नाले सिमर सिमर तिस सदा संभाले। जो सिमरनगे परमेश्वर दा नाम साई दा नाम आख्या सदा गुरु उन्हां दे अंग संग है। गुरु मेरे संग सदा है नाले सिमर सिमर तिस सदा संभाले। पर जद नाम जपेगा प्राणी नाम जप के उसकी आत्मा परमेश्वर दे चरणा नाल जदों एक मिक हो जाएगी। बाबा नंद सिंह जी महाराज क्या करदे सन जदों जीव नाम जपदा है फिर नाम जपन वाला और नामी विच फर्क नहीं रह जांदा। हर हर जन दो एक हैं बिप विचार किछ नाही जल ते उपज तरंग जियो जल ही बिखे समाए। नाम जपन वाली आत्मा परमेश्वर दे एडे नेड़े हो जांदी है कि फिर जदों संसार दे दुख आउंदे हन तां उस आत्मा नूं ओ दुख दुखी नहीं कर सकदे। दुखां विच भी रह के ओ सदा परमात्मा दा शुकराना करदा है पाणी नूं मंदा है ते की कहिंदा है तेरा किया मीठा लागे। हे प्रभु तू सुख विच रखिया मैनूं दुख विच रखिया है ए तेरा ही हुक्म है तेरा ही पाणा है। तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे। गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे ने मैं तां हे प्रभु सदा तेरे चरणा विच एही आराधना करांगा कि तू मैनूं अपना नाम बख्शे मैं तेरा सिमरन करां अमृत वेले उठ के तेरी भगती करां। और जो परमात्मा दी भगती करदे हन गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे ने गुरु सदा उन्हां दे अंग संग है।

श्रेय लगेगा, अगे ओ वधेगा, आत्मक उन्नति ओ करेगा जेड़ा गुरबाणी नु खोजेगा, समझेगा, विचारेगा, अमल विच लियावे। कहिंदे ने ना कोई समझे, कसूर किसे होर दा तां नहीं। मिसाल भाई साहब ने बड़ी प्यारी दित्ती, कहिंदे ने समुंदर दीआं तहां विच पता नहीं कितना कुछ पिया। पहला तां समुंदर दी गहराई नहीं पता लगी, ते जो कुछ धरती ते उपलब्ध है ना, सवाए कुछ कुछ चीजा जेड़ियां धुप ते खुशकी मंगदियां, बाकी धरती का सारा पदार्थ समुंदर दे अंदर मौजूद है। सोना चांदी हीरे जवाहरात इथों तक कि इस वेले तां बंदा अपनी खाद खुराक के मामले में भी समझदा ना, धरती तो